हे निर्गुण स्वरूप, हे दुनिया दे मालक, हे सृष्टि दे मूल, हे जगत नू बनाने वाले परमात्मा, सिद्ध समाध अंत नहीं पाया। बड़े बड़े सिद्ध जोगी जती जिन्ना ने तेरा ध्यान ला के, तेरा ध्यान तर के बड़ा बड़ा तप किया, बड़ी बड़ी भगती की, सिद्ध समाध समाधियां ला ला के, पर कहते ने अंत नहीं पाया, तेरा अंत ना पा सके, तेरा अंत ना लै सके। फिर की होया, सिद्ध समाध अंत नहीं पाया, लाग रहे सरनाई, कहते ने आकर हार के तेरी शरण विच आ पाए, तेरी शरण विच आ डिगे, तेरे चरणा नाल लग गए कि हे मेरे मालक असी तेरा अंत नहीं पा सके। सिद्ध समाध अंत नहीं पाया, लाग रहे सरनाई, लेहो आरती हो पुरख नरिंजन, सतगुर पूजो पाई। भाई जी वह अंत नहीं पा सके, उन्होंने आखिर मालिक के चरणों में डिगना पिया, ते तू ही उस लैंड ते ना तुरी, तू वह आरती करनी है जेड़ी आरती तेनों गुरु ने समझाई है। केड़ी आरती है? सतगुर पूजो भाई। आप ही अपने गुरु की पूजा कर, अपने गुरु के चरणों ना लग। अगे भगत कबीर जी ख्याल देते हुए समझाते ने, कहते ने, ठांडा बरमा निगम बिचारे। आरती उसकी करनी है जिसके दरबार विच बर्मा वर्गा खड़ा होके, ब्रह्मा बहुत वड्डा देवता है, पर ब्रह्मा भी उसके दरबार विच खड़ा होके वेद विचार रहा है। ठांडा बर्मा निगम, निगम का भाव है वेद। ठांडा बर्मा निगम विचारे, अलख ना लखिया जाए। क्योंकि हे परमात्मा तू अलख है, लखन तो बाहर है, तेरी लीला लखी नहीं जा सकती, तेरे गुण कहे नहीं जा सकते, तू इतना बेअंत है, तेरे गुण बयान नहीं कीते जा सकते। अलख ना लखया जाए, वो अलख है जो लखया नहीं जा सकता। अगे भगत कबीर जी कहते हैं।

तोड़ मंगे तिस गुरु सिख की, जो आप जपै अवरै नाम जपावै। गुरु नानक भी उसकी चरण तोड़ी मंगते हैं, जेड़ा जपदा है और जपांदा है सतनाम श्री वाहिगुरु। लाहौर दे विच एक वैद है सुजान चंद, नाल इहदा एक मित्र है, कविता गांदा है, कवि है, पर दोनों दुखी। सुजान चंद कहिंदा मेरे कोल धन दौलत की कमी नहीं, पर मन दुखी रहिंदा। कवि क्या करदा, सुजान चंद तेरे कोल सब कुछ है तू फिर भी सुखी नहीं। मैं कवि हां, हिंदुस्तान ते औरंगजेब दा राज है, जिसने राग और कविता बंद कीती है। मेरी कविता दा मुल कोई नहीं पांदा, मैं भुखा मरदा मैं तां दुखी। तेरे कोल खाण नू सब कुछ तू फिर भी दुखी, मेरे कोल खाण नू कुछ नहीं मैं तां दुखी। ए है दोना दा दुख। एक दिन कवि आया, सुजान चंद कहन लगा इस कवि नू, भाई मित्रा की गल है, आज तेरा चेहरा दसदा है तू बड़ा खुश है, कुछ मिले है। कवि कहन लगा हां, आज मैनू भी कथा मिल गई है, वो है श्री आनंदपुर साहब, जिथे धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज रहिंदे हन, जिहड़े किसे बादशाह कोलों नहीं डरते। एक कवि ते की सुनिया, उन्हां 52 कवि रखे हन, वो कवियां दा बड़ा मान करदे हन। मैं चलिया आनंदपुर साहब, सुजान चंद जे तू भी चलना है ते चल, चंगे दोस्त दा कम है चंगा राह दसना। सुजान चंद ते कवि लाहौर तो चले आनंदपुर साहब पहुंचे, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का दरबार सज रहा है, संगतां दी भीड़ लग रही है। कवि दी वारी आई, मथा टेकिया, कहन लगा महाराज ऐडा वड़ा हिंदुस्तान, पर मेरी कविता का कोई मुल नहीं पा रहा सा संगत। एक बेनती करदे आ, ये कोई सुनिया सुनाईया गल्ला नहीं, ये साडे हिंदुस्तान का इतिहास है। औरंगजेब दे वेले राग रंग बंद सन, कविता बंद, पूजा पाठ बंद, और ये हिंदुआं नू जबरदस्ती मुसलमान बना रहा सी। इसने राग बंद कीते, तां गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने सिखां नू हुक्म कीता राग गाओ। औरंगजेब ने कहा, किसे ने कविता नहीं गानी, ता गुरु साहबा ने 52 कवि रखे, कह दिता अणख नाल जीवना है, ना जुलम करना ते ना ही जुलम सहना। इसे वास्ते आनंदपुर साहब, विसाखी वाले दिन अज तो 300 साल पहला धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने खालसे पंथ की साजना की। इस कवि ने बेनती की थी, महाराज मेरी कविता दा कोई मुल नहीं पांदा। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहन लगे, जिदी कोई था नहीं ओदी गुरु नानक थां है। कवि नु रख लिया। सुजान चंद दी वारी आई, इसने भी मथा टेकिया ते कहन लगा, महाराज मेरा मन बड़ा भटकदा है, सब कुछ है कोल पर मन नु सुख नहीं। साहब जी कहन लगे, दौड़ जा, समझ ना आई।
कहन लगा महाराज किथे जावा। साहब जी कहन लगे तेनू क्या दौड़ जा। तीसरी बारी क्या मथा टेकया जिधर पैर लै छुरे उस पासे दौड़ पिया। शाम पई पैर नो ठोकर लगे सुजान चंद धरती ते डिगा ते बेहोश हो गया। जद होश आई ताकि देखदा पिंड दे बंदे इस नु पिंड विच लैके आए सन। पिंड वाले पुछदे हन कौन है कित्थों आए है किथे जाना है। सुजान चंद नु समझ आ गई सी कहन लगा आया वा आनंदपुर साहब तू जिथे जाना सी उथे पहुंच गया। मैं वैद हां पैसे नहीं लवांगा रोटी कपड़ा लवांगा तुहाडी सेवा करांगा। जड़ियां बूटियां लिया के दवाई बनांदा है जिसनों भी दवाई देंदा है उसनों कहंदा है बेटा पहला कहो सतनाम श्री वाहे। समा बीता गया संगता आनंदपुर साहब जाके क्या कर दिया हन। संगता आनंदपुर साहब जाके क्या कर दिया हन। महाराज अमके पिंड एक वैद है पैसे नहीं लेंदा सेवा बड़ी करता है बहुता बोलता नहीं पता नहीं कौन है। जद संगत कहती है पता नहीं कौन है ता सास संगत मेरा कलगियां वाला तन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज अगो मुस्कुरा पेंदे हैं। मानो उन्हां दी मुस्कुराहट ये भेत दसदी है तुसी नहीं जानदे भाई सुखो वो कौन है पर मैं जानता वो कौन है। और

सेवा प्रवान हो गई। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सिखां समेत सुजान चंद दे पिंड वाल आए। पिंड दे लोकां नूं पता लगा, सारे गुरु साहिबां नूं लैण वास्ते चल पए। सुजान चंद भी अपनी झुग्गी विचों बाहर निकलिया, पर पिंड विचों इक माई आई, अपने घर लै गई कि मेरी नूह दे पेट विच दर्द है, उस नूं दवाई दे। माई दी नूह नूं दवाई देण तों पहलां कहा, बेटा कहो सतनाम श्री वाहिगुरु। जद माई दी नूह नूं आराम आया, हुण सुजान चंद अपनी झुग्गी वल दौड़िया, पर मन विच सोचदा है पता निकल गया वाला है कि चला गया, पता नहीं होर कितना तरसना पवेगा। पर जिस वेले सुजान चंद पिंड दे बाहर आया ते की देखदा है, इहदी झुग्गी दे दुआले संगतां दी भीड़ लगी है। एक पासे घोड़े खलोते हन, सिंह खलोते हन, खुशी दी हद ना रही। संगतां दी भीड़ नूं चीर के जद अपनी चौपड़ी विच पहुंचिया, जद ये नजारा देखिया तो हुण ते प्यार दी कोई हद ना रही। सतसंगत की देखदा, वो मेरा शहनशाह, वो राजियां दा राजा, नासरो मनसूर।

तू सेवा इतनी कीती, अज तेनू लैण वास्ते आए हैं, अपने नाल लैके आनंदपुर साहब आए और इतने दयाल हो गए, अमृत तैयार किया सुजान चंद।

सारे जाने ओदे चरणा दे नाल ध्यान लाइए, ध्यान नू जोड़िए ते सरबत दा भला मंगिए। ते पातशाह फरमान करदे हन

जिन्ना चिर यह परिपूर्ण परमात्मा अकाल पुरख के चरणों नाल जुड़िया मेरा खालसा यह मेरा ही रूप है। पर जदों यह भरमां विच वहमां विच पै गया गुगे जठेरे मनन लग पिया मड़ी मसाणी मनन लग पिया इहदे मन विच द्वेष आ गई इनू ए पता लग गया।

0: डीएम म्यूजिक पेश कर देने शब्द गुरबाणी गुरु रामदास राखो सरनाई।
1: गुरु रामदास राखो सरनाई
0: भाई किशन पाल सिंह जी दी रस।

सूरज निकलिया सारे छपरे अंधेर पलोआ सिंह के निकाब जी पन्नी जाए नदी परोआ

सानू वस्तु मिल जाए फिर साझा बैठ गया सब दान को कीता सब कीर्तन कीता से सुनिया सदला हो जाएगा। करो अरदास जिन्हें धरती उपटी है और पानी जरूर मिले, जिन्हें धरती उपटी है और पानी मिले, जिन्हें खोजिए है और माल जरूरत है। जिस सिख ने मन जोड़ के अरदास की है अरदासा मेरा धन गुरु नानक पहले देख बोलेगा पीछे प्यार नाथ हरि बोलो।

सतसंग का रखा उत्सुक कर कर जीवा नानक नाम महारस मीठा अनदिन मन पुस्तक करया करो भाई गुरु जी पुस्तक मन में कर निरंकार कर मन मेरे सत व्यवहार निर्मल वसना अमृत पियो सदा सुहेला पुस्तक गुरु चंगा कर दिता है ना ओदे विच भी रह के धन गुरु नानक कहते जी वाहिगुरु ने पुत्र की दात दी है पुत्र नाल भी प्यार करो पर ओने नाल प्यार जरूर करो जिन्हें पुत्र बख्शे है आखिर जी एक गुरु बाबा जी कहने लगे निंदा करनी है अपनी करो उस्तुत करनी है गुरु दी उस्तुत करो एक गुरुमुखता है एक गुरुमुख दी चाहिए तो प्यारे सात संगत यह वचन ना बोलिए जिदे नाल किसी का मन दुख फरीद जी ने किया सब का मन माणिक ठाहर मूल मचंगवा जे तो प्रिया जी सिके तो न छी गुरु नानक दास जी जेदा गुरु इतना मिठा हो सिख तो करे तोड़ा ना प्यार भरे बचन चंगे वचन करो भाई चंगयाई दुनिया में वंडेगी सिख दी ये ड्यूटी ड्यूटी है आप जपो अमरे धाम

संगत रहो, जौ की भूसी खाओ। जौ दी तोड़ी थोड़ा कम कटदा, कट जे गरीबी कट ले, जौ दी तोड़ी खा के गुजारा कर ले, पर नाम जपण वाले दी संगत ना छड। कबीर साधु की संगत रहो, जौ

सब सुरती मिल सुरत कमाई, सब कीमत मिल कीमत पाई, ज्ञानी ध्यानी गुर गुर हाई, कहन ना जाई तेरी तिल वड्याई, सब सत सब तप सब चंगियाइयां सिद्धां पुरखां की।

केवट भाग वडेरे जिन हर हर श्रद्धा हर प्यास हर हर नाम मिले तृप्ता सह मिल संगत गुण प्रगास जिन हर हर हर रस नाम न पाया ते भागहीन जम पास जो सतगुर शरण संगत नी आए त्रिग जीवै त्रिग जीवास जिन हर जन सतगुर संगत पाई।

अनेक पढ़ें वो सिमरत सासत जी, कर क्रिया खट कर्म करंता, छे भगत भले जन नानक जी, जो पावे मेरे हर भगवंता, तू आद पुरख अपरम

ताको कर पाहन अनुमानत, महामूल किछ भेद न जानत, महादेव को कहत सदा शिव, निरंकार का चिन्हत न भैव, आप अपनी बुद्ध है जेती, वर्णत भिन्न भिन्न तोय तेती, तुमरा लखा न जाए पसारा, कह विद सजा प्रथम संसारा, एक रूप अनूप स्वरूपा, रंक भयो राव कई रूपा, अंडज जे रज से तज कीनी, उत पुज खान बहोर रच दीनी, कहूं फूल राजा हवे बैठा, कहूं सिमट प्यो शंकर कैठा, सगरी सेठ दिखाए अचंभव, आद जुगा स्वरूप सी अंभव, आवर इच्छा मेरी तुम करो, सिख उबारा सिख संघरो, दुष्ट जीते उठवत उत्पाता, शकल मलेश करो रण घाता, जे अस तुझ तव सरनी परे, तिनके दुष्ट दुखत हवे मरे, पुरख जीवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब तारे, जो कल को एक बार ध्याय है, ताके काल निकट नी आए है, रक्षा होय तय सब काला, दुष्ट अरिष्टरे तत्काला, कृपा दिख तन जाय निहर हो, ताके ताप तनक मो हर हो, रिद्ध सिद्ध घर्मो सब होई, दुष्ट शाह स्वय सकै न कोई, एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फास्ते ताए उबारा, जिन नर नाम तिहारो कहा, दारिद दुष्ट

नवी म्यूजिक मेमोरीज इंडिया फगवाड़ा कंपनी वालों पहले शब्दों की कैसेट संगतों के वास्ते भेंट की है। सच्चा पातशाह कृपा करे कंपनी के मैंबर अपने चरणों का प्यार सेवा करन दा बल बख्शे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

तुपक तबर आरती। सतगुरु जी कह रहे हैं कृपान खंडा खड़क तुपक कहंदे ने बंदूक नो तबर आरती। ए जड़े शस्त्र ने कृपान खंडा खड़क बंदूक तीर सैफ सरोही सैथी। सैथी कहंदे ने बरशी। साहब जी कहंदे ने ए

परमेश्वर नु भी कई नाम देते और तीरा तुफंगा नु भी पीर किया। साहब जी कहंदे ने तीर भी तू ही है, सैती भी तू ही है, तू ही तबर है, तू ही तरवार है, के तू ही तीर है, तू ही बरछी है, तू ही तबर है, तू ही तलवार।

युद्ध करदिया शहीद होया ता सतगुरु जी ने उस वेले ओ नजारा थक के संगोशा दी वड़ियाई कीती कि किस तरह उन्हें अनेका दुश्मन

जिन्हें दोनों पैर अगले चुके हुए ने। भाई बचित्र सिंह ने एक हाथ नाल कोड़े की लगाम फड़ी, दूसरे हाथ दे नाल ओ नागनी फड़ी हुई है और जोर दी वगा के एक जकारा छड़ के ओ नागनी मस्त हाथी दे सिर विच मारी। ओ लोहे दा तवा पाड़ के नागनी ओदे मत्थे विच तस गई। नागनी दा मत्थे विच तसना सी। ओ जड़ा हाथी है ओ वापस मुड़िया और अपने सिपाहियां नूं लताड़दा होया पिछा नूं भजन लग पिया। और भाई बचित्र सिंह हाथी जद भज गया ते हुण जिहड़े अगे दुश्मन लड़न वास्ते त्यार

प्रेम ना करो, एक परमेश्वर की आराधना करो, तो फिर देखो तुहाडी किस तरह जीत होवेगी। ते कहंदे ने इहो ही उपदेश साहिबां ने सारे

और सुधार हरि सिंह नलुआ सोने दाड़े चमक दे चेहरे शस्त्रां नाल सजे हुए सिंह घोड़ियां ते सवार जद इन अफगाना

पहले पैरे आपने उठ के तीजे पैरे उठ के तुर पैण, क्योंकि पहले दो पैर आप कीर्तन नाम विच जुड़े रहते, जदों तीजा पैर हुंदा।

उल्टी प्यारी टुरना किते गुरु सच्चे पातशाह वल मेरी पिठ ना हो जाती। सात संगत बोलो श्री दुर्दे हो पिछली प्यारी अदा।

के बादशाह पिट हो रही है हुण इथो दी मैनू माफी दे दे। ते आपने फिर जाना ब्यासा नदी तो जल दी गागर भरनी सिर ते चुकनी ते फिर सत्कार दे नाल मन विच पाव

खुंजाया जो सेवा तो बिना चला गया। आज 12 साल का आखिरी दिन है, आज एडा चखड़ चल रहा है, एडा मीह पै रहा है कि रस्ता नजर नहीं आउंदा। आप पुठी प्यारी तुरदे हुए अद्धे रस्ते पहुंचे,

ऐसी कृपा मुहे करो। एक साखी है, सुकेत मंडी दा राजा आया, कह लगा दसम पातशाह, धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी नू मेरे ते कृपा करो। सामने एक सिख सी जो घोड़ियां दी लिद हटा के तबेले चो निकलिया सी, वो कवि भी सी, 52 कवियां विचों। महाराज कहन लगे राजे नू तैनू ओदे वर्गा बना दिए। राजा कंबिया, कहन लगा महाराज तुसी कृपा करन लगे हो कि कहर करन लगे हो? महाराज ने धन्ना सिंह नू आवाज मारी, भाई धन्ना सिंह जी दर्शन दियो, आओ मेरे कोल। आ गए, कहन लगे भाई धन्ना सिंह जी कुछ मंग लो। धन्ना सिंह कहन लगा तुसी कृपा दे सागर हो, अगे कृपा कीती होर कृपा करो। महाराज कहन लगे तैनू ऐसे राजे वर्गा बना दिए। वो भी कहन लगे तुसी कृपा करन लगे हो कि कहर करन लगे हो? इहदे वर्ग। महाराज कहन लगे राजन तू इहदे वर्गा नहीं बनना चाहुंदा, इह तेरे वर्गा नहीं बनना चाहुंदा, है दोनों कहते भी कृपा कर। असल दात उहदा नाम है, ए ओनू दिंदा जिहदे ते ओह कृपा कर दिंदा। इस शब्द विच भी ये मंग मंगी है, ऐसी कृपा मोहे करो, तेरे बख्शिया दे चरण होण ते मेरा मथा लग जाए, सात संगत दी चरण धूड़ पर